ஹலோ, குட் மார்னிங், நமஸ்தே, சாஸ்கட்டூன். CFCR 90.5 FM पर हम आ गए हैं आज का संगीत माला लेकर, जो आप हर शनिवार को सुनते हैं ICCA की बदौलत. और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ. कैसे हैं आप सब? मौसम बहुत ही सुंदर है, और जब हम ड्राइव करके यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में थोड़े थोड़े फॉल कलर्स भी देखने को मिल रहे थे. तो मन कर रहा था कि चलो यहाँ पे निकल से, यहाँ से निकल कर सीधे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए. और ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम आज का ये जो प्रोग्राम है आपके लिए लेकर आए हैं. तो आप अगर कहीं पे भी ड्राइव करते हो या कहीं जाने का प्रोग्राम हो, तो आप हमारा ये प्रोग्राम एन्जॉय कीजिएगा. और आज के प्रोग्राम में इतने बेहतरीन जो गाने हम आपको सुनाने वाले हैं, तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले ये कहूँगी कि अगर आपको आपकी फरमाइश का कोई गाना सुनना हो, किसी को बर्थडे विशेस भेजनी हो, या एनिवर्सरी विशेस भेजनी हो, या अपना कोई भी मैसेज अपनों तक पहुँचाना हो, तो आप हमारे स्टूडियो में हमें कॉल कर सकते हैं. हमारे स्टूडियो का नंबर है 3062425002. तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. और मैं आपको एक गाना सुना रही हूँ, और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गाने से आपको क्या लग रहा है कि हम कौन से टॉपिक होगा आज का हमारा. तो चलिए सुनते हैं ये पहला गाना.

जी हाँ, हमें कॉल्स आने लगे हैं और हमें हर्षमीत जी ने कहा कि शाहरुख खान के ऊपर है या काजोल के ऊपर है या, लेकिन नहीं, मैं और एक आपको गाना सुनाती हूँ और आप अंदाज़ा लगा लीजिए।

जी हाँ, हमें लगातार कॉल्स आए हैं। हमें किरण जी ने भी कॉल किया, बाजवा जी ने भी कॉल किया। उन्होंने कहा हम जुड़ गए हैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए। और मैंने सबको यही कहा कि ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आज कौन सा बड़ा बड़ा से आर्टिस्ट को लेकर हम आज का ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पहले जो गाना चलाया वो फिल्म थी डर का गाना था, और ये जो है फिल्म सिलसिला का गाना मैंने आपको चलाया। तो ये दोनों में कॉमन बात ये है कि ये जो फिल्म है वो, इस फिल्म के डायरेक्टर है वो है हमारे यश चोपड़ा जी। जी हाँ, तो आज का ये संगीतमाला हम करेंगे हमारे बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा जी के ऊपर।

जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यश चोपड़ा जी की। यश चोपड़ा जी जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। पार्टीशन के पहले वो पाकिस्तान में थे और पार्टीशन के बाद में वो इंडिया में लाहौर में लाइक लुधियाना में आकर रहे थे। और फिर उनके जो पिताजी थे वो अकाउंटेंट थे और यश जी वैसे 8 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटे यश चोपड़ा जी थे। और उनके जो बड़े भैया हैं जिनका नाम आज भी हम सब बड़े रिस्पेक्ट से लेते हैं, बीआर चोपड़ा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी हिट्स मूवी बनाई थी। तो वो और उनके जो दूसरे भाई थे धर्म चोपड़ा, वो कैमरामैन थे और उनके एक ब्रदर थे वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो यश जी के पिता चाहते थे कि उनका पूरा फैमिली चाहता था कि यश चोपड़ा को पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए लंदन भेजा जाए। लेकिन यश चोपड़ा जी को पहले से ही फिल्मों में बहुत ही इंटरेस्ट था, फिल्में बनाने में उनको बहुत ही मज़ा आता था। तो उन्होंने जैसे तैसे करके बॉम्बे तो पहुंच गए, लेकिन फिर उनके दिल में उनको एक बात चुभने लगी कि अगर मैं मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है अगर मैं वो करूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, कि जो हमेशा ज़िंदगी में जो दिल चाहे वैसा करना ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने पिताजी को और अपने भाई को बताया कि भाई मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म में करियर बनाना है, मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, तो मैं भैया के साथ काम करना चाहता हूँ। और देखिए, कभी कभी हमें ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि दिल की जो बात है अगर एक बार ट्राई करके हमारे पेरेंट्स को बता दे तो शायद आपको परमिशन मिल जाए, या वो मंजूर भी होकर आपको शायद परमिशन भी दे दे कि चलो किस्मत आजमा लो। तो बस उन्होंने वैसा ही किया, अपने घर में सबको बताया कि भाई मुझे फिल्मी लाइन में मेरा करियर बनाना है। तो वो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे और तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म थी धूल का फूल, जो बी आर चोपड़ा के बैनर तले उन्होंने बनाई थी। और वो फिल्म का टॉपिक जो था वो बहुत हटके था। वो यश चोपड़ा जी वैसे बड़े सिंपल से हैं, लेकिन वो जो भी फिल्में बनाते हैं उनका जो टॉपिक होता है वो बड़ा हटकर टॉपिक होता है। और देखिए, यही तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, कि अगर आप कोई भी फील्ड में जाओ तो आप कुछ हटकर बनाते हो, या आप में ऐसी कोई पोटेंशियल होता है कि आपको मन में से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है कि नहीं मैं ये करूँगा तो शायद लोगों को पसंद आएगा। तो बस उन्होंने फिर धूल का फूल ऐसा ही टॉपिक था जो वो फिल्म बनाई थी। फिर दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई थी धर्मपुत्र, जिसमें शशि कपूर जी ने काम किया था। वो फिल्म चली तो नहीं थी, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। और फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी वक्त। तो ये वक्त उस समय की मल्टी स्टारर फिल्म थी और उनका जो डायरेक्शन में उनका जो हाथ था वो भी अच्छे से बैठने लगा था। और वो वक्त फिल्म तब बहुत ही हिट गई थी और फिर उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए। और उन्होंने अपना खुद का, जिसको कहते हैं यशराज फिल्म्स का, जो है वो बैनर खोला था। और उनकी पहली फिल्म थी दाग, और दाग फिल्म उसको कह सकते हैं कि यशराज फिल्म का जो बेबी था वो उनकी पहली फिल्म थी। तो वो फिल्म बनाने के लिए उनको काफ़ी लोगों ने मदद की थी। जैसे देखिए, उनके पास पैसे तो थे नहीं, अपने बड़े भैया के बैनर के तले वो काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भैया मुझे अपना अलग से यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन करना है, तो उनके भैया ने कहा ठीक है, तो आज से तुम्हें अपना सब काम खुद करना होगा, लोगों से मिलना होगा, हीरो हीरोइन से बात करनी होगी, या म्यूजिशियन जो भी है वो सब तुम्हें करना होगा। तो उनके लिए मुश्किल तो था, लेकिन एक बार दिमाग में जो बात ठान ली, अगर आप उस पर पूरा फोकस करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ताकत रोक सकती है। तो बस वैसा ही यश चोपड़ा जी के साथ हुआ था। तो पहले मैं सुनाती हूँ आपको यही फिल्म का बेहद सुरीला गाना, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है और ये यश चोपड़ा जी का भी बेहद पसंदीदा गाना है।

0: तो ये जो फिल्म जब यश जी बना रहे थे तो उनके पास ना ऑफिस थी ना कुछ भी था, क्योंकि वो नए थे और सबको पता तो था कि वो अच्छी डायरेक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने जब सबको कहा कि हम मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने वाला हूँ, तो आप लोगों ने तो वी शांताराम जी का नाम सुना ही होगा। तो वी शांताराम जी को पता चला तो उन्होंने अपना जो स्टूडियो था वो उनको रेंट पर दिया था कि कहीं तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, नए लोग होते हैं तो। और देखिए यश जी बोलते हैं हमेशा से कि उनके जो भी को स्टार थे वो भी इतने सपोर्टिव थे कि ये फिल्म बनाने के वक्त राखी जी को कहा, राजेश खन्ना जी को कहा और शर्मिला टैगोर से जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो ये फिल्म में दो हीरोइंस थी और वो राखी जी एंड शर्मिला जी दोनों टॉप की हीरोइन थी। तो इस फिल्म में राखी जी का रोल और शर्मिला टैगोर का रोल जो है वो एकदम बराबरी का था, लेकिन दोनों के बीच में टॉप की हीरोइन थी तो इतनी कुछ मन मिटाव जैसा चल रहा था क्योंकि कंपटीशन मार्केट में हुआ करती थी। और राजेश खन्ना जी की बैक टू बैक 8 फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो ये फिल्म बनाने के टाइम उनको बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब उन्होंने स्टोरी सबको सुनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन सबको दिल में डाउट था कि ये फिल्म इतना हटके टॉपिक है तो ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन हमेशा से दोस्त जो होते हैं आपको हर आपकी लाइफ के सिचुएशन में हेल्प करते हैं। तो राखी जी ने कहा यश जी को कि आप मेरे पास पैसे पड़े हैं तो आप ये पैसे यूज़ कर लो, क्योंकि मूवी बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ही हैं। और फिर साहिल लुधियानवी जो थे उन्होंने भी कहा कि देखो मैं पैसे तुमसे नहीं लूँगा, अगर फिल्म हिट होगी तो आप मुझे पैसे देना। और गुलशन राय जी ने जो उस ज़माने के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर थे उन्होंने भी यश चोपड़ा जी को, मैं ये बात कर रही हूँ ये फिल्म जो आई थी 1967 में या कहीं आई होगी, तो तब 2 लाख रुपए का चेक यश जी के हाथ में थमा दिया था। तो यश जी कहते हैं कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हमेशा से अच्छे लोग मिले हैं। और ये जो आप गाना सुन रहे हैं इसके जो बोल है, मुझे लगता है शायद यश जी ने जब लाइफ को एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि देखिए सब किस्म के लोग होते ही हैं दुनिया में, तो उनको भी कुछ ऐसे ही अनुभव रहे होंगे। और ये देखिए आपने ये जो गाना मैंने आपको कहा तो ये उनका बहुत ही फेवरेट गाना था। तो हम ऐसी ढेर सारी बातें करेंगे और आपको मैं फिर से हमारे स्टूडियो का नंबर बता देती हूँ। हमारे स्टूडियो का नंबर है 3062425002। आपको कोई भी अपनी फरमाइश का गाना सुनना हो तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और हम आपकी फरमाइश आपको सुनाएंगे और आपके साथ साथ हम भी सारे गाने एंजॉय करते हैं। तो चलिए इसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं कहूँगी कि यश चोपड़ा जी के जो भाई थे बीआर चोपड़ा जी, उन्होंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग थी अपनी मम्मी के साथ बहुत थी, तो उनकी मम्मी ने उनको सपोर्ट किया था और उनका कहा था कि तू जो कुछ भी करेगा मुझे पूरा विश्वास है और तुझे जो दिल चाहे वैसा तू कर। और यश जी ने अपनी यशराज प्रोडक्शन की पहली फिल्म दाग बनाई और दाग के सारे गाने सुपर हिट रहे थे और उनकी जो उनकी अपने आर्टिस्टों के साथ अपने को स्टार के साथ में जो बॉन्डिंग थी वही उनको आज तक बहुत ही काम आई थी। यश चोपड़ा जी ने अपनी टैलेंट के बलबूते पर अपने बड़े भैया बीआर चोपड़ा जो इतने बड़े फिल्म मेकर थे उनके सामने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था और आज भी उनका जो यशराज फिल्म्स है वो उनके बेटे आदित्य चोपड़ा चला रहे हैं। तो ऐसे ही ढेर सारी बातें करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Emphasis at CFCR. No hits, no misses. With the help of our sponsors, we've been bringing you No Hit, No Miss Radio for 35 years and counting. CFCR would like to thank the following platinum level sponsors for their generous contributions to this year's Emphasis fundraising campaign.
2: Sunrise Records, a proud Canadian record store chain and leading retailer of music, film, games, and pop culture items. Check out one of their 3 locations in town or shop at sunriserecords.com. At Cuco's Pizza, your pizza isn't just food, it's art. Order perfectly balanced artist-made pie at cucospizza.ca. That's K-O-O-K-O-S. Now with free delivery from their 3 stores in Saskatoon. Turning the Tide Bookstore is Saskatoon's alternative bookstore, offering fiction and hand-picked nonfiction books on current events, sustainable living, and generally making the world a better place. Find them at 615 Main Street and turning.ca.
1: To all our awesome FEmphasis sponsors and donors, thanks for keeping No Hit, No Miss Radio on the airwaves. It's not too late. To donate today, visit cfcr.ca/donate.
3: Birkenstock sandals, blunt stone boots, don't have socks, covers the feet on the day or night commutes.
4: Come on down to the Broadway Shoe Repair to snag some new Blundstones, the perfect boots for Saskatchewan fall and winter. We have all the classic Blundstone models if yours are a little worse for the wear. We have new colors and CSA-approved steel toes, plus a new composite midsole and toe for lighter weight and less fatigue at the end of a long day. At the Broadway Shoe Repair, we've been wearing, selling, and tuning up Blundstones since Y2K. Whatever your Blundstones need, from stitching and patching to insoles and more, we can help. Broadway Shoe Repair, 638 Broadway Avenue.
3: Now all the ladies and the gentlemen, they all ask how and where. The Broadway Shoe Repair. The Broadway Shoe Repair.
5: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
2: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with REMAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
6: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
0: Welcome back to Sangeet Mala, jo aap sun rahe hain CFCR 90.5 FM par. Mere yani Nipa ke saath aur mere aaj technical assistant hai Vivan. To aaj ke is program mein hum baat kar rahe hain Yash Chopra ji ki. जब भी प्यार की रोमांस की बातें आती है तो हमारे जहन में यश चोपड़ा जी की छवि आ जाती है. यश चोपड़ा जी की मूवीज़ इतनी प्यारी होती है और उनके जो फिल्मों का थीम होता है वो हमेशा या तो फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं या हर रिश्ते को वो इतना अहमियत देते हैं कि उसमें माँ बेटे भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं और प्रेमी प्रेमिका तो होते ही हैं और समय हमेशा से पूरा फैमिली उनकी फिल्में देख सकते हैं. तो यशराज जी जो भी फिल्में बनाते हैं वो फिल्मों के जो इर्द गिर्द कहानियाँ होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और उन्होंने आज तक सिर्फ 22 मूवीज़ बनाई हुई हैं जो यश जी ने खुद ने डायरेक्ट की हुई है. लेकिन उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उनकी जो मूवी होती है वो इतनी ज़ोरदार होती है और इतनी लेविश होती है. वो इतने अच्छे से फिल्मों की शूटिंग करते हैं, उनके जो लोकेशन होते हैं वो भी बढ़िया होते हैं. तो देखिए क्वालिटी वर्क हो तो उसको ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी हुई है कि आप मूवी पे मूवीज़ बनाते जाएं और फिल्मों में कुछ दम ना हो, वैसा तो होना नहीं चाहिए. इसलिए उन्होंने बड़ी कम मूवीज़ बनाई हैं लेकिन जो भी मूवीज़ बनाई हैं सब एक से बढ़कर एक है. तो देखिए हमें एक रिक्वेस्ट सॉन्ग सुनने की एक रिक्वेस्ट आई हुई है. कल्पेश जी सुनना चाहते हैं फिल्म दाग का किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना मेरे दिल में आज क्या है.

हाँ, तो ये फिल्म दाग थी, और उन्होंने भी देखिए फिल्म बनाने के पहले और जब जी जब भी उन्होंने ये स्टोरी सबको सुनाई तो सबको कहा कि नहीं नहीं डायरेक्शन बहुत अच्छा है, स्टोरी ज़रा हटके है, डोंट वरी अगर स्टोरी चले या ना चले। लेकिन एक बार ये फिल्म रिलीज़ हो गई तो लोगों ने बेहद पसंद किया था। और इस फिल्म में मैंने जैसे कहा कि राजेश खन्ना जी का भी ऐसा दौर चल रहा था कि उनकी आठ फिल्म पहले से फ्लॉप हो चुकी थी, तो ये फिल्म बनाने के वक्त यश जी को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब आप नए अपना नया बैनर शुरू करते हो या कोई भी काम अपना नया करते हो तो सबको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन जब आपको अपने खुद में भरोसा हो, विश्वास हो, तो फिर आपके लिए ईश्वर ही आपका साथ देता है। और देखिए उनकी ये फिल्म बहुत ही चली थी और लोगों ने बेहद पसंद की थी। और बाद में अमिताभ बच्चन जी के साथ में उनके काफ़ी फिल्में आई थी। उन्होंने 1975 में दीवार फिल्म आई थी, और दीवार फिल्म से अमिताभ बच्चन जी का जो एंग्री यंग मैन का जो उनको खिताब मिला था कि उन्होंने बैक टू बैक यश जी के साथ में जो भी फिल्मों में काम किया था उसमें उनका जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुआ करता था, और वो हमेशा से गुस्से वाला एंग्री यंग मैन जो कहते हैं ना, वैसा था। तो फिल्म दीवार में भी वैसा था। फिर कभी कभी जो फिल्म थी उसमें उन्होंने शायर का एक रोल किया था, लेकिन बस ये भी एक लव ट्राइंगल का ही था। और यश जी कहते हैं कि कभी कभी फिल्म जो उन्होंने जो बनाई है वो उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म रह चुकी है, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म की शूटिंग की थी कश्मीर में, और यश जी ने कश्मीर के तीनों सीज़न को इस फिल्म में एंजॉय करके दिखाया था। तो वो कहते हैं कि ये फिल्म उनके ज़िंदगी की एक यादगार फिल्म है, और ये फिल्म की स्टोरी यश जी की वाइफ पामेला जी ने लिखी हुई थी। तो यश जी और पामेला जी की शादी के बाद जब उन लोग स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे, तब उनको उनकी वाइफ पामेला जी को ये कभी कभी स्टोरी का कभी कभी फिल्म का थीम जो था वो उनको पसंद आया, और उन्होंने यश चोपड़ा जी से कहा था कि हम फिल्म बनाते हैं। और ये दाग भी उसी का एक नमूना था कि पामेला जी जो यश जी की वाइफ हैं उनका हमेशा से उनको सपोर्ट रहा है, उनके साथ जो भी कोई भी गाना हो, और कहते हैं पामेला जी को म्यूज़िक का बहुत ही नॉलेज था। तो देखिए यश जी की बैकबोन जो कह सकते हैं वो पामेला चोपड़ा थी। तो मैं अभी यहाँ पर कभी कभी फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वो मैं हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ, लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

कभी कभी का जिक्र होते ही देखिए हमें एक फरमाइश आई है, रिश्मा सुनना चाहती हैं फिल्म कभी कभी का, बेहद सुरीला गाना है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और ये जो गाना है वो पिक्चराइज किया गया है वहीदा रहमान पर। यश जी की फिल्म में हमेशा से हीरोइन को सेंटर में रखकर मूवीज़ बना दी जाती है कि कोई भी सिचुएशन होती है उसमें जो विमेन होती है उनका जो क्या वो पूरे उनके आसपास जो सिचुएशन होती है वो कैसे उसको टैकल करती है। तो ये फिल्म की भी स्टोरी ही ऐसी भी थी कि अमिताभ बच्चन जी, राखी जी, शशि कपूर और वहीदा रहमान सब एक साथ में इस फिल्म में थे और ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी थे। तो यश जी का इतना गहरा सबके ऊपर असर था कि अगर यश चोपड़ा जी जब भी कहे कि मुझे ये फिल्म बनानी है और कोई भी आर्टिस्ट को वो कांटेक्ट करता था तो वो स्टोरी सुने बगैर ही रेडी हो जाते थे और कहते थे कि आप जब भी कहो हम आपके लिए वो डेट्स ब्लॉक कर देंगे। तो यश जी का जो स्टोरी का जो उनकी जो मूवी बनाने की जो स्टाइल थी वो इतनी सटीक थी कि सबको यश जी के साथ काम करना एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसी बात हो जाती है। तो चलिए यही एक इसी फिल्म का यही गाना, मेरे घर आई एक नन्ही परी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना, रिश्मा जी की फरमाइश पर सुना देते हैं।

बेहद सुरीला गाना था और हमेशा से जब भी किसी के घर में बिटिया रानी का जन्म होता है तो ये गाना है। और लम्हे की एक बहुत ही प्यारी है बिटिया रानी, वो भी वहीदा रहमान जी की ही ऊपर पिक्चराइज किया गया है। तो इस फिल्म से यश जी का और वहीदा रहमान का बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड बन गया था। और यश चोपड़ा जी जब भी कोई फिल्म बनाते थे उसमें वो वहीदा जी के लिए एक रोल रखते ही रखते थे। और यश जी हमेशा वहीदा रहमान के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी ही सुलझी हुई और वेरी डिसिप्लिन, सीधी सादी है, कि वो जब सेट पर होती है तो इतनी नेचुरल एक्टिंग करती हैं और उनका जो ऑरा है वो पूरे जो उन लोग का शूटिंग का स्पॉट होता है वहाँ पर वो बहुत अच्छे से सबके साथ लियाज से पेश आती थी। तो देखिए जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसमें काम करने वाले पूरे जो पूरे यूनिट में जो सब है उनके साथ में यश जी का बड़ा अच्छा रबता रह चुका था। और हमेशा से यश जी का जो कोई भी शूटिंग होता है तब वहाँ पर, जैसे यश जी को खाने के बड़े शौकीन थे तो वो पूरी यूनिट के लिए उनको जो खाना चाहिए, जो उनको सहूलियत चाहिए वो सब वहाँ पर वो सबके लिए लेकर आते थे। तो यही है कि जब वर्किंग एनवायरनमेंट एकदम हेल्दी हो तो सब लोग रेडी हो जाते हैं कि उनके साथ काम करने के लिए। और उन्होंने काफ़ी हीरोइनों को चांस दिया है। और देखिए फिल्म आई थी काला पत्थर, और काला पत्थर, दीवार और त्रिशूल वो सब ऐसी फिल्में थी कि तब 70s के एरा में ऐसे एक्शन फिल्मों को ज़्यादा सब लोग पसंद करते थे। और सेम उन्होंने धर्मपुत्र जो की थी शशि कपूर जी के साथ में की थी, तो शशि कपूर जी हमेशा से उनके साथ हुआ करते थे। वक्त फिल्म बनाई उसमें भी उन्होंने शशि कपूर को फिल्म में लिया हुआ था, फिर कभी कभी में भी, काला पत्थर में भी, त्रिशूल में भी। तो उनके जो खास लोग होते हैं तो उनकी जो फिल्म होती है वो उनमें उनको रोल देते ही हैं। तो अभी अगली फरमाइश आई है टोरंटो से, हमें सचिन जी सुनना चाहते हैं। फिल्म आई थी काला पत्थर का, किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, एक रास्ता है जिंदगी, ये सुनते हैं।

0: एक रास्ता है जिंदगी, ये जो गाना है वो सचिन जी अपनी लाइफ के लिए कह रहे हैं कि एक रास्ता है जिंदगी, जो हम रहे तो कुछ नहीं। तो ये जो गाने होते हैं वो भी यश जी की फिल्मों के गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, वो गाने के जो बोल होते हैं वो आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हश्मी जी का फोन कॉल आया था और वो सुनना चाहते हैं, फिल्म आई थी डर, और यही फिल्म का उदित नारायण और लता जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने।
1: तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं,

0: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
1: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
2: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ. और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं ICCA की बदौलत. वो हमारे प्राइम स्पॉन्सर है और आपको तो पता ही है कि ICCA ही एक हमारा एक बड़ी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे न्यू कमर्स को या हमारे कम्युनिटी को जो भी बहुत सारी उनके लिए नई नई डील्स और बहुत सारी आपके लिए मंदिर में भी और सब जगह नए नए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं. और आप हमेशा से वेबसाइट पर जाकर चेक करिएगा जो भी नए लेटेस्ट प्रोग्राम्स होने वाले हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, वो ICCA के वेबसाइट पर जाकर आप ज़रूर से देखिएगा. और आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ रहा है, हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच. ये आप सबका प्यार है जो आप इतने चाव से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और ऑफकोर्स आज का जो ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा जी के ऊपर, आज का ये पूरा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ क्योंकि 27th of September उनका बर्थडे है. तो इसलिए मैंने सोचा आज यश जी के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम कर देते हैं. और आप अगर स्टूडियो में कॉल करना चाहते हो तो हमारे स्टूडियो का नंबर 306-242-5002 है. तो चलिए अगली फरमाइश का गाना हम सुनाते हैं. यश जी की फिल्म आई थी सिलसिला, और ये फिल्म भी उसका टॉपिक भी बहुत ही हटकर था, यही सेम लव ट्रायंगल था. लेकिन ये फिल्म पता नहीं हम भी ये फिल्म के बारे में अगर सोचे तो पहले ये फिल्म का जो स्टार कास्ट था वो अलग था. यश जी ने परवीन बाबी जैसे अभी लेकिन सिलसिला में जैसे रेखा जी का रोल था वो परवीन बाबी को दिया था, और जया जी का रोल था वो स्मिता पाटिल को उन्होंने कास्ट किया था. लेकिन अमित जी और यश जी दोनों एक बार दिल्ली जा रहे थे शूटिंग के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही बात पे से बात करा तो वो यश जी कुछ खुश नहीं नज़र आते. तो अमित जी ने उनको पूछा कि भाई क्यों हुआ, क्या है, आपको लग रहा है कि ये फिल्म की कास्टिंग सही है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहिए कि रेखा और जया इस फिल्म में काम करें. और अमित जी ने कहा कि ठीक है, तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है. फिर यश जी और यश जी ने यही बात रेखा जी से और जया जी से कही, और फिर दोनों ने दोनों राज़ी हो गए थे यही फिल्म में काम करने के लिए. और बाद में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कैसे मना किया, तो यश जी को डायरेक्टली सबको कहना नहीं था, तो उन्होंने ये काम सौंप दिया था कि भाई स्मिता पाटिल को कहा कि भाई शशि कपूर को कहा कि भाई तुम जाके स्मिता पाटिल को बता देना कि इस फिल्म में तुम काम नहीं कर रही हो. तो देखिए इतने क्लोज थे शशि कपूर जी और यश जी के उन्होंने उनके ऊपर ये काम सौंप दिया. और परवीन बाबी को भी किसी से कह दिया कि भाई आप इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं. तो वो कास्टिंग में इतना बिलीव करते हैं. और देखिए हमें भी पता है कि फिल्म में अगर कास्टिंग सही हो, कि उनको पता होता है कि ये रोल में कौन फिट बैठेगा, तो ये इसलिए ये फिल्म लोगों को पसंद तो आई. लेकिन मुझे लगता है अगर आज भी कोई देखेगा तो वो ये फिल्म को बेहद पसंद करेगा. तो ये फिल्म का गाना ये कहाँ आ गए हम, ये गाना सुनना चाहते हैं दीपेश जी. तो चलिए सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गाना.

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

ये कहाँ आ गए हम। सही बात है, इसके जो बोल है वो हम हमारे साथ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कहाँ आ गए हैं। अभी बाजवा जी का कॉल आया था, उन्होंने यही कहा कि वो जब यहाँ पर आए थे तो ये अक्सर ये गाना सुनना चाहते सुनते थे और गुनगुनाया करते थे कि ये कहाँ आ गए हम। तो देखिए, गानों की लंबी लिस्ट है, मुझे सबके गाने चलाने हैं। तो अगला जो गाना है, आई थिंक आयशा जी ने कॉल किया था और वो कह रही थी कि ये बहुत ही, आज का प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगा और वो मजबूर हो गई हमें कॉल करने के लिए, और वो फिल्म कभी कभी का गाना सुनना चाहती है, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। तो किशोर कुमार जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया हुआ, ऋषि कपूर और नीतू सिंह के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना सुनते हैं।

यश जी की जिंदगी में ऐसे भी ऐसा भी दौर आया था कि जब 70s और 80s में सब एक्शन फिल्में चल रही थी और उन्होंने 2-3 फिल्म बनाई, विजय बनाई, मशाल बनाई, तो वो फिल्में कुछ कुछ का इतना परंपरा, लेकिन वो कुछ फिल्में इतनी चली नहीं थी, लेकिन उनका जो मन था, उनका जो मेन उनकी उनमें उनकी जो क्वालिटी थी वो हमेशा रोमांटिक फिल्में बनाने की थी। तो उन्होंने फिर एक रिस्क लिया, उन्होंने उस एरा में वापस से लव रोमांस को वापस फिल्मों में लाने के लिए तब उन्होंने फिल्म बनाई थी चांदनी, और चांदनी में उन्होंने कास्ट किया था श्रीदेवी जी को, ऋषि कपूर जी को और विनोद खन्ना जी को। तो यही फिल्म का गाना बिंदु जी सुनना चाहती हैं, और गाने की बोल है लता मंगेशकर की जी आवाज़ में, तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा।

कितना सुरीला म्यूज़िक दिया हुआ है शिव हरि जी ने, और यही फिल्म में शिव हरि जी जो संतूर प्लेयर थे और हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हमारे फ्लूट प्लेयर थे, उन्होंने इस फिल्म की म्यूज़िक दी है। और इससे फिल्म का एक सुरेश वाडेकर की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। ये गाना सुनना चाहती है हमारे लिसनर नीपा जी, तो चलिए सुनते हैं चांदनी फिल्म का सुरेश वाडेकर की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना।

तो यश चोपड़ा जी को स्विट्जरलैंड इतना पसंद है कि आपको मैंने जैसे कहा कि वो जब हनीमून पर गए थे स्विट्जरलैंड, वो गए थे तो तब उनको स्विट्जरलैंड इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने सारी फिल्मों के एक आध गाना का शूटिंग तो स्विट्जरलैंड में किया ही किया होता है। तो आपको पता होगा कि यश चोपड़ा जी को स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने इतना ऑनर दिया हुआ है कि वहाँ पर रेलवे है, रेलवे की जो ट्रेन है उस ट्रेन का नाम भी उन्होंने यश चोपड़ा ट्रेन रखा हुआ है। और हमारे हर्षमीत जी ने भी कहा और कल्पेश जी ने भी, हमारे जो लिसनर हैं उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में वो जो एक जगह है कि वो जो लेक का नाम है लॉनेन लेक, वहाँ पर वो लेक का नाम चोपड़ा लेक के नाम से बुलाया जाता है। और स्विट्जरलैंड के इंटरलोकन शहर में एक मिडल ऑफ द मतलब मिडल में उन यश जी की एक कॉपर की बड़ी सी एक ब्रॉन्ज की स्टैचू भी वहाँ पर बनाया गया है। तो ये एक ऑनर की बात है कि उन्होंने वहाँ पर जाके इतने फिल्मों की शूटिंग की है कि इंडिया में भी हम लोगों को स्विट्जरलैंड का जो अगर रास्ता बताया हो तो वो है यश जी। उनकी फिल्मों में इतने प्यारे से वो जगह पर शूटिंग करते थे और सबका अभी अट्रैक्शन हो गया है कि अगर वहाँ यूरोप कहीं घूमने जाए तो स्विट्जरलैंड तो जाना ही जाना होता है। तो ये हमारे लिए भी एक बड़े ही गर्व की बात है कि यश जी ने इंडिया में तो अपना नाम इतना रोशन किया ही है, साथ में यहाँ पर भी लाइक वेस्टर्न कंट्री में उनके बहुत सारे फैंस हुआ करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्योंकि ढेर सारे गाने मुझे आपको सुनाने हैं और हमारे लिसनर्स को भी कितना पता होता है ना कि वो बोलते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद वो वही जगह पर अपने यश जी के गानों के ऊपर खुद शिफॉन की साड़ी में वो गाने की रील्स बनाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो यश जी और यश जी की फिल्मों की हीरोइन की बात करें तो आपने देखा होगा चांदनी में श्रीदेवी जी का पूरा लुक उन्होंने चेंज करके दिया था। यश जी की फिल्मों में जो भी हीरोइन होती हैं वो इतनी सुंदर दिखाते हैं और यही एक नज़ारा हम नमूना बोल सकते हैं। फिल्म आई थी दिल तो पागल है, इसमें आप देखोगे तो करिश्मा कपूर के पहले उन्होंने सात हीरोइन को कॉन्टेक्ट किया था कि वो निशा का रोल करने के लिए, लेकिन माधुरी दीक्षित लीड रोल में थी और माधुरी जी के सामने जब यश जी ने कहा कि जूही चावला, काजोल, मनीषा, रवीना टंडन, तब्बू, उर्मिला और शिल्पा शिरोडकर सबको उन्होंने कहा कि ये जो निशा का रोल है वो करने के लिए, लेकिन वो कोई तैयार नहीं हुआ। और लेकिन ये जो रोल है बाद में करिश्मा कपूर ने लिया और देखिए उन्होंने जो ये रोल किया है उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो फिल्म दिल तो पागल है का एक गाना है चांद ने कुछ कहा, ये गाना सुनना चाहती हैं आरती जी और टोरंटो से प्रीति जी। तो चलिए सुनते हैं बेहद सुरीला गाना फ्रॉम दिल तो पागल है।

इस फिल्म का एक गाना है अरे रे अरे ये क्या हुआ। इंग्लैंड लंदन से ये गाने की रिक्वेस्ट आई हुई है और ये गाना सुनना चाहती हैं पलक जी। तो चलिए यही गाने सुन लेते हैं लता जी की उदित नारायण की आवाज़ में।

आई नो आज का प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है, सब मुझे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और मुझे सबके गाने भी चलाने हैं. तो अभी सुधीर जी का कॉल आया था और वो सुनना चाहते हैं फिल्म आई थी वक्त, और वक्त का गाना है ओ मेरी जोहरत अभी, और यही गाना सुनना चाहते हैं लंदन इंग्लैंड से मीना जी. उनकी एनिवर्सरी थी तो ये वो गाना अपने हस्बैंड कमल जी को डेडिकेट करना चाहते हैं. तो आपको भी मीना जी और कमल जी, आपको अपने शादी की सालगिरह मुबारक हो, और आपके लिए और सुधीर जी के लिए ये गाना.

0: मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी
1: देखिए इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, मुझे अभी आधा ही सुनाना पड़ रहा है, और क्योंकि अभी दो और गाने मुझे चलाने हैं। और हम भूल कैसे सकते हैं कि यश चोपड़ा जी की फिल्म आई थी वीर ज़ारा, आपने देखा होगा कि प्रीति जिंटा को इसमें उन्होंने एकदम अलग सा लुक दिया है, और उनका जो वेस्टर्न लुक है उनको पूरी तरह से बदल दिया है और एकदम से फेमिनाइन प्रीटी लुक दिया हुआ है। और ये फिल्म का जो गाना है तेरे लिए हम हैं जिए, वीर ज़ारा फिल्म का, मदन मोहन जी की सारे गाने इस फिल्म में लिए हुए, उनकी पूरी सब कंपोजिशन ली हुई है, और ये गाना रूप कुमार राठौड़ और लता जी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं अनीता जी और कानन जी।

आज का ये प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और थैंक यू सो मच हमारे सारे लिसनर्स का जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी और हमने कोशिश की कि आप सबके गाने हम आपको सुना दें। आप ऐसे ही प्यार से हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए। और बस अभी जाने से पहले और एक गाना मैं चलाऊँगी। ग्रेस सुनना चाहती है, टोरंटो से ग्रेस जी सुनना चाहती हैं जब तक है जहाँ, जो यश जी की आखिरी मूवी थी, इसी का ये गाना नीति मोहन के आवाज़ में गाया हुआ है। तो आप ये गाना सुनिए और हम आपसे लेते हैं आज्ञा। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, उसका हमें धन्यवाद करना है। एटीट्यूड लाइफ में रखना ज़रूरी है, लेकिन ग्रेटिट्यूड का। टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब के लिए सायोनारा।

0: कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मजा ले रहे हैं ना आप? इंडिया की याद ताज़ा कर देती है ये टाइम की गर्मी। मुझे पता है आज से 3-4 साल पहले ही शायद पूरे सीजन में एक बार 30+ जाता था, और लास्ट 2 या 3 साल से 30+ तो इजीली जा रहा है, और इस बार की गर्मी 36, 37, 38, ओह माय गॉड। किसी को भी ये लग नहीं रहा कि हम लोग अभी कनाडा में बैठे हैं। अगर बॉम्बे में होती तो मैं शायद ऐसा ही कहती।
1: क्या बोलती तू?

करके। लगता है गर्मी के चक्कर में मैं आप सबको विश करना ही भूल गई हूँ। भाई जिसका भी बर्थडे था या आज है या आने वाला है, उन सब के लिए मैं एक गाना प्ले कर ही देती हूँ। चलिए सुनते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिल्म का नाम है सुजाता, एस डी बर्मन जी का म्यूजिक और आवाज़ आशा भोसले जी की।

गर्मी की बात करते हुए मुझे ये लगा कि चलो यहाँ मेरे लिए बैंफ और जास्पर मेरी फेवरेट जगह है, तो मैंने बैंफ का वेदर चेक किया। बैंफ का वेदर भी 36-37, उससे अच्छा तो हमारा माथेरान और महाबलेश्वर है। वो हसीन वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़े और मंद मंद जो हवा बहती है, और वहाँ पे हमारे पार्टनर के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हाथों में हाथ लिए मैं जो अगला गाना आपको सुनाने वाली हूँ, तो वो गाना एंजॉय करने का कुछ अलग ही एक मज़ा होता है, राइट? तो मैं आपको गाना सुनाने चाहती हूँ, फिल्म का नाम है अभिलाषा, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। गाने के बोल हैं वादियाँ मेरा दामन, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये गाना।

आरडी बर्मन जी का म्यूजिक था और मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। आप भी शायद कहीं दूर वादियों में अपने चाहने वाले के साथ पहुंच गए थे ना। अभी गर्मी की बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है और ऐसे में एक रिक्वेस्ट आई है जो इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक ला देगी। फिल्म का नाम है मंजिल और ये गाना बंटी जी सुनना चाहते हैं बड़ोड़ा से। गाने की बोल है रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बोल योगेश जी के और म्यूज़िक आर डी बर्मन का।

1979 में मुंबई कितना खाली खाली सा लग रहा है, और ये गाना सुनते ही मेरे दिमाग में एक यही बारिश का गाना याद आ रहा है। फिल्म का नाम है ताल और गाने के बोल हैं नहीं सामने ये अलग बात है। पता नहीं ये बारिश का गाना सुन के मुझे एकदम ये गाना प्ले करने का मन कर गया है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको ए हरिहरन जी की आवाज़ में फिल्म ताल का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी तरह आप में से भी कई लोग होंगे जिनको ये गाना बहुत पसंद है। सुभाष घई की फिल्म है, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल माय फेवरेट नंबर।

राजेश रोशन का म्यूजिक और अनजान के बोल, बहुत ही प्यारा गाना था। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको दोस्ती जैसा गहना मिलता है। सबसे हटके रिश्ता होता है दोस्ती का। और मैं तो कहती हूँ, रिश्ता चाहे कोई भी हो, जिस रिश्ते में प्यार हो वो रिश्ता हमेशा अटूट रहता है। अगले गाने की जो फरमाइश आई है उस फिल्म का नाम है एक रिश्ता। रक्षा जी अपनी होने वाली बहू अम्मी को ये गाना डेडिकेट कर रही है। तो चलिए सुनते हैं रक्षा जी की फरमाइश पर अपनी बहू अम्मी के लिए ये प्यारा सा गाना।

बहुत ही अरसे के बाद ये गाना मैंने सुना। अच्छा लगता है पुराने गाने सुनने में जो हम कहीं पीछे छोड़ कर आ गए हैं, और आज भी ये सब गाने सुनने के बाद हमारी वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने हमें भेजिए ताकि आपकी फरमाइश और वो फरमाइश के गाने हम सब एंजॉय कर सकते हैं। अगला गाना है वो भी बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, और ये गाना सुनना चाहते हैं सुधीर सूर्यवंशी जी। गाने के बोल है ओ मेरे दिल के चैन, म्यूजिक आर डी बर्मन जी का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के। तो चलिए सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार।

स्क्रीन पे राजेश खन्ना जी और तनुजा जी क्या लग रहे हैं, सुपरस्टार राजेश खन्ना के पीछे ऐसे लड़कियां दीवानी नहीं थी। अगला गाना भी जो है वो भी किशोर कुमार जी का ही है और ये गाना सुनना चाहते हैं बड़ौदा से गिरीश जी। गिरीश जी सुनना चाहते हैं फिल्म आंधी का कोई भी गाना, उनको आंधी फिल्म के सभी गाने पसंद है, तो गिरीश जी की फरमाइश पर फिल्म आंधी का गाना सुनेंगे, तुम आ गए हो नूर आ गया है। गुलजार जी के बोल और आर डी बर्मन जी का म्यूजिक।

ये फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन जी ने काम किया है। सुचित्रा सेन ने बहुत ही कम हिंदी मूवीज की है, देवदास, ममता, बम्बई का बाबू और आंधी, और सब की सब फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी से सबका मन जीत लिया था। तो चलिए चलते हैं अगले गाने की ओर, अगली फरमाइश। नीपा जी सुनना चाहती हैं फिल्म कलंक का तबाह हो गए, श्रेया घोषाल की आवाज में। और ये जो गाना है वो सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था और ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना था जो उन्होंने अपनी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित के साथ किया है। तो चलिए प्रीतम जी के म्यूजिक में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, फिल्म कलंक।

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है कोई भी नहीं ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है।

0: listen to this station. It plays new music, supports your community, and provides up-to-date news that you know you can trust. And unlike other stations, the people who work and volunteer here are a part of your community. Remember though, they do this on a shoestring budget. The solution is the Community Radio Initiative. You can find out more details at mycri.ca. In just a few clicks, you can generate an email to send to the politicians who need to hear your message. mycri.ca.
1: CFCR 90.5 FM. What all the kiddies are listening to.
2: आप सुन रहे हैं संगीत माला नीपा कौशिक के साथ CFCR 90.5 FM.
1: CFCR 90.5 FM. What all the kiddies are listening to.
3: अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तौसीक अजीज़ और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बैठक। और दिल की गहराइयों से आप सब तमाम सुनने वाले जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ सैटरडे की इस खूबसूरत सी दोपहर में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से अपना वीकेंड जो है इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपका बारबेक्यू का प्लान है आप उसकी तैयारियों में कर रहे होंगे या फिर आप ऑलरेडी यू गाइस और मिडल ऑफ योर इवेंट। और सास्कटून में बहसियत अगर हम जब रह रहे हैं तो सास्कटून में सस्कैचुअन में बिलखसूस हमें तो समर बहुत कम मिलता है क्योंकि कुदरत को यही मंजूर है। काफ़ी लोग काफ़ी दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को गिला करते हुए नज़र भी आते हैं तो लेकिन आखिर क्या किया जाए क्योंकि इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं रहा। इंसान हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहा है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जद्दोजहद और कोशिश करते रहना चाहिए। शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं कहूँगा कि इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। और हर सैटरडे की तरह मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत अच्छा प्रोग्राम लेकर आया हूं। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि एक मौजू डिस्कशन हो सके जिससे आप भी इससे सीखें और मेरी भी हमेशा की तरह कोशिश होगी कि मैं भी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आप लोगों से ज़रूर सीख के जाता हूं। बैठक का ये बहुत मुझे फ़ायदा होता है कि वीकली बेसिस पे जितने चाहने वाले हैं, जितने दोस्त हैं, जितनी बैठक ऑडियंस है हमारी जो सास्कटून में है, पाकिस्तान में है, दूसरे कंट्रीज़ में है, फेसबुक पर फीडबैक से पता चलता रहता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फैमिली से, इस सिलसिले से जुड़ गए हैं। तो ये भी एक खूबसूरती है इस प्रोग्राम की। तो बात हो रही थी सैटरडे की खुशी की, तो सैटरडे पूरा वीक मैं इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ऑफ कोर्स वीकेंड भी होता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने को वक्त मिलता है, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट यू गाइस। हम इस प्रोग्राम में खुशियाँ शेयर करते हैं, हम इस प्रोग्राम में जो पिछले पूरे वीक में चीज़ें गुजर चुकी होती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, आने वाले वीक्स को हम प्लान करते हैं। और ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सिलसिले जो हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। यही बैठक है और यही है। और आज मेरा और आप सबका साथ रहेगा ऑल द वे टिल 3 PM। और अभी चूँकि COVID-19 भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, और स्टूडियो में उसकी भी काफ़ी उसकी वजह से सिचुएशंस चेंज हुई हुई हैं, थिंग्स आर नॉट क्वाइट नॉर्मल येट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतरी आ रही है। लेकिन दैट बीइंग सेड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू गाइस, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। though the economy is opening again और काफ़ी businesses खुल रहे हैं, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जो इसकी नेचर है नॉर्मल की तरफ ये आ रही है, बट हम सब ने मिल के इस चीज़ को बर्दाश्त करना है और इसमें से हमने गुजरना है। जी, जिस तरह जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक के बैठक प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ हम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी डिस्कशन लेकर आए जो जो लाइक ऑल ऑफ अस कैन ईजीली रिलेट टू इट, ठीक है। और मोस्टली ऐसे टॉपिक्स मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि जो बहुत आम होते हैं, आसान फहम होते हैं, आप लोग ईजीली उससे रिलेट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आई डू रिलेट माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर आई कन्वे द मैसेज और द डिस्कशन टू यू गाइज। अच्छा, अब जो मौजूद बैठक में चूज़ किए जाते हैं वो बसा औकात ऐसे होते हैं, वो इतने आम टॉपिक्स होते हैं कि उनको उनकी आम होने की वजह से ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, ठीक है। ये इसको जब हम डिस्कस करेंगे, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एलैबोरेट मोर एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट वाई आई चूज अ पर्टिकुलर टॉपिक्स इन द कन्वर्सेशन ऑफ बैठक। अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में जो मैंने टॉपिक चूज किया है बैठक में वो इखलाकियात का है, ठीक है। इंग्लिश में एथिक्स, जो अगर हम मज़ीद अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूँ तो कॉमन एथिक्स होते हैं नॉर्मल, जो हमें अपने रिलेशंस में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने आप ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट्स में, वी शुड नॉट अवॉइड एथिक्स। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर डीलिंग में हैं, कस्टमर सर्विस में हैं, तो हर कन्वर्सेशन में, हर ज़िंदगी के पहलू में कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इखलाकियात को हमें उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इन चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की अगर पहचान बनती है तो वो उसके इखलाक बनते हैं। वो यकीन कीजिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मुलाकात अगर होती है तो कई दफ़ा उनका नाम याद नहीं रहता आपको, आपको वो इवेंट, वो मोड़ आपको याद रहता है ज़िंदगी में जहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात होती है, आपको नाम ही याद रहता है। बट आप अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप लोग कहते हैं कि यार मुझे उसका नाम तो याद नहीं है मगर यार वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मतलब उस गैदरिंग में मुझे ये फेवर दिया या मेरे साथ हमने बड़ी बातें की एंड देन वी नेवर फेल्ट दैट वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम। तो दैट वाज अ प्राइम एग्जांपल कि हम इखलाक की बदौलत अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर इखलाक नहीं है, अगर आप किरदार को मस्बत अंदाज में कैरी नहीं करते तो आपके जो ज़िक्र है आपकी एब्सेंस में वो फिर अच्छे अल्फाज में नहीं होती। खैर, आज इस टॉपिक का मकसद आप लोगों को लेक्चर देना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करने से मेरी बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये होती है कि मैं अपने वजूद की, अपने किरदार की मैं इस्लाह करता रहूं और इल्म या नॉलेज या जो भी वो शेयर करने से बढ़ता ही है। मैं यही सुनता आया हूँ और यही है। इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद डिस्कशन होगी। अभी चूँकि म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है, टॉक प्रोग्राम भी है, आप हमारी फेसबुक लाइव पर भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप कमेंट करें तो आपके कमेंट्स को डेफिनेटली शो में शामिल किया जाएगा। और अभी मैं प्रोग्राम में यहाँ पर एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सब लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, प्ले करने जा रहा हूँ। शफकत अमानत अली की सायरानी का आवाज़ है, मैं नहीं जाना, दैट इज़ द टाइटल बेसिकली। और इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, आप इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बैठक, मुझे कहते हैं तौसीक अजीज़। आपको क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है, आप भी हमें कमेंट कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आज की डिस्कशन का हिस्सा बनिए। आज हम बात कर रहे हैं एथिक्स के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर, कि हमने किस तरह इस्लाह करनी है और हमने किस तरह जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है इखलाकियात की सेंस में। अक्सर देखें, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो मैं बड़ी ना बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूँ कि जब हम किसी के साथ मेवे गुफ्तगु होते हैं, कन्वर्सेशन में हम किसी के साथ कर रहे होते हैं, तो पहली जो हम गलती करते हैं कि हम वी डू इंटरप्ट अलॉट, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट ये हमारे मुआशरे में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसका ज़रा ज़्यादा रुझान है कि हम अच्छा। और मज़े की बात यह है कि जो इंटरप्ट कर रहा होता है उसको भी नोटिस नहीं हो रहा होता कि वो कन्वर्सेशन में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे हैं, कितना हलल पैदा कर रहे हैं। और इसी तरह जिसको वो इंटरप्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वो बात को मुकम्मल नहीं होने दे रहे होते, वो बंदा भी बड़ा कूल माइंडेड होता है, वो भी बड़ा बंदा ठंडे दिमाग से जो है वो इंटरप्शन कब एक्सेप्ट करता है और कब फिर अपनी आवाज़ ऊंची करके, मतलब वो नाराज़ नहीं होते, वो कोई गुस्से में नहीं हो जाते एकदम से, मगर उनको भी पता नहीं होता कि वो कब वो फिर अपनी बात सुनाने के लिए या अपनी बात करने के लिए उनकी उनका जो वॉल्यूम लेवल होता है वो हाई हो जाता है। एंड जो थर्ड पर्सन होता है या जो इन चीज़ों में जिनका कम रुझान होता है, वो बंदा देखने वाला कहता है कि यार ये शायद लड़ रहे हैं या किसी बात पे इनकी बहस हो रही होती है। हालांकि इंटरप्शन करने वाला भी जो है वो नादानिस्ता तौर पर इंटरप्शन कर रहा होता है, डिस्टर्बेंस का बायस बन रहा होता है, और जिस बंदे को डिस्टर्ब किया जा रहा होता है, जिसकी बात पूरी नहीं हो रही होती, उसको भी पता नहीं चलता और वो भी फिर अपनी बात दोनों कंटिन्यू रखते हैं, और फिर जिसकी वजह से जो है वो कन्वर्सेशन किसी ख़ास सिमत नहीं जाती। तो पहले तो हमने ये देखना है कि कन्वर्सेशन करने के दौरान वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न, व्हेन वी इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन कन्वर्सेशन, हमने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, हमने अगले बंदे की बात सुननी है। आई थिंक ये कॉल अशफाक अहमद साहब का है या किसी और पर्सनालिटी का है कि उन्होंने कहा था कि हमारे मुआशरे में सबसे जो एक बुरी चीज़ है, नापैद चीज़ है, वो ये है कि हम अगले बंदे की बात को समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम अगले बंदे की बात सुन रहे होते हैं उसको जवाब देने के लिए। अब ये बहुत आसान अल्फाज हैं, मगर इस एक बहुत ही सिंपल सादा सी फ्रेज़ में एक पूरी कन्वर्सेशन का कह लें कि एक एक ज़ाब्ता बताया गया है, जिसमें आपको तवज्जो भी देनी होती है उसके बारे में कहा गया है, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने अगले बंदे की अगर बात आप सुन रहे हैं तो वो अल्फाज देखें सामने, अगर आपकी समात तक उसके अल्फाज आते हैं, एक बंदा बात करता है और उसके अल्फाज की बनावट, उसका लहजा अगर आप तक पहुंच रहा है, उसकी आवाज़ आपके कानों के पर्दों तक आ रही है, समात तक आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सुन ही रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं, मगर कन्वर्सेशन में इस स्पेसिफिक फ्रेज़ में जो ये कहा गया है कि हम सुनते हैं मगर जवाब देने के लिए, हम समझने के लिए नहीं सुनते। वाइल वी आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन इन कन्वर्सेशन, तो अगर हम वो सुनने के साथ साथ समझने वाला प्रोसेस भी स्टार्ट कर दें और हम अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो उसी लम्हे में मरकूज़ करें और उसी बंदे की अगर हम बात सुनेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, आई डोंट मीन टू हैव अ स्किल सेट इन सर्टन लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन में अपना मैसेज दूसरे बंदे तक मैसेज पहुंचाना,
आसान तरीके से और अगले बंदे को समझ आ जाना, एतमाद में साथ में ले लेना, यू गाइज आर कमिंग ऑन टू द सेम पेज, दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जब व्हाइल वी आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन, अगर हम समझने की और सोचने का भी प्रोसेस साथ में स्टार्ट कर दें, बजाय जवाब सोचने के कि अच्छा इस बंदे ने अगर ये बात कही है तो मैं इसकी सोच के ऊपर या इसकी बात के ऊपर हावी होने के लिए मैं क्या जवाब दूंगा, 100 में से लाइक 95-98% ऑलमोस्ट हम यही सोच रहे थे कि अच्छा अब ये बंदा अगर चुप करेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगले बंदे की बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन अगर जब सुनते हैं लेकिन वो भी हम समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम जवाब देने के लिए हो रहे होते हैं। तो एक तो ये कॉमन मिस्टेक है, प्रीटी मच श्योर ऑल ऑफ यू गाइस हैव एनकाउंटर्ड दिस, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा और मैं भी, ऑफकोर्स इंसान गलती का पुतला होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करता हूँ, कभी कभार हो जाता है, बट वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड these things। basically اخلاقیات کی ہم ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ایک ایک مختصر سی دو لائنوں میں سمجھ لیں کہ what actually ethics are, اخلاقیات actually ہوتی کیا ہے۔ تو اخلاقیات basically میرے نزدیک اخلاقیات اخلاقی اقدار کا ایک ایسا نظام ہے جو ایک خوشگوار زندگی کی خاطر ہمارے رویے کو تشکیل کرتا ہے۔ ठीक है, ये अगर आप اخلاقیات کے بیسیکلی نظام کو اپنائیں گے سمجھ لیں گے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کو یو ول بی انجوائنگ اے پلیزنٹ لائف آفٹر۔ ٹھیک ہے، بٹ اس کے لیے شرط کیا بتائی گئی ہے کہ وی ہیو ٹو فالو دی رولس آف ایتھکس۔ ٹھیک ہے، اب اخلاقیات کے توسط سے ہم ایمانداری سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جو رول بتایا گیا اخلاقیات کا وہ ایمانداری ہے، جس سے ہمارے ارد گرد لوگوں سے بھروسہ اور دوستی جنم لیتی ہے، اور اخلاقیات بیسیکلی دراصل مسرت کی کلید ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اخلاقیات کے پہلے رول جو آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، جب ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک لائف سٹائل بنائیں گے، and we will try our best to be loyal or honest in any kind of transition of life or in different aspects of our lives, to phir hamare jo ird gird ke log honge jinse hum daily basis pe interaction karte hain, once again wo aapke dost yaar aa jate hain, aapke of course family members aa jate hain, aapke just acquaintances aa jate hain, aapke office mein log aa jate hain, aap kahin jahan par aap job kar rahe hain aap unke sath aa jate hain, to جب آپ آنیسٹی کو اپنا لائف اسٹائل بنائیں گے تو پھر ان کے ساتھ آپ کا ایک برج بلڈ ہوگا، ان کے ساتھ آپ کی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو پہلا جو رول ہے ایتھکس کا، اخلاقیات کا، وہ میرے نزدیک ایمانداری ہے۔ اب ہر انسان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ مختلف نظریات سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ سملر نہیں ہوتی دوسروں سے، ہر انسان کی ڈفرینٹ زندگی ہوتی ہے، ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے، ڈفرینٹ اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو خیر پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمانداری جو چیز ہے وہ آف کورس اسلام میں بھی اس کی بڑی تلقین کی گئی ہے، اور بلکہ اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی مذہب کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آنیسٹی، ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی، ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم واقعی اپنی بھلائی کی فکر کرتے ہیں تو اپنے رویے کے متعلق ہمیں جو ہے وہ اپنی وزڈم کے حساب سے ڈیسیژنز جو ہے وہ لینا ایک ہمیں معقول نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں تھوڑا سا اس حوالے سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وین وی اسٹارٹ پرائیورٹائزنگ آور سیلوز آن دی ادرز، تو پھر ہم جو ہیں وہ بسا اوقات جب ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں تو پھر ہم عقل
को इस्तेमाल में हम नहीं ला सकते या नहीं लाते अक्सर देखने में ये आता है। अब अगर हम इसी रूल को देखेंगे तो हर कोई जो इंसान है वो हमेशा यही चाहता है कि मेरी लाइफ में कंफर्ट हो, मेरी लाइफ में खुशियां हों। तो वो हर बंदा इन चीज़ों का हकदार भी ख़ुद को समझता है और हर इंसान खुश रहने का हकदार वाकई है भी, लेकिन जिसमें ऑफ कोर्स हम भी शामिल हैं। तो अब इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं में कभी कभार दानिस्ताना दानिस्ता तौर पर हम नफ्सा नफ्सी के पीछे पड़ जाते हैं। वी डोंट केयर अबाउट आवर पीपल वी आर सराउंडेड बाय, हम जो है जिनके साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं हम उनको बसा औकात इग्नोर कर देते हैं। तो अपना जो है वो ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, आप अपने राइट्स के लिए ज़रूर जो है आवाज़ बुलंद करें, अपने राइट्स के लिए ज़रूर जद्दोजहद करें, मगर हमें उसी दौड़ में उसी इस्ना में दूसरे लोगों के साथ भी जो है वो इंसाफ का दामन हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना, हमने दूसरों के साथ भी इंसाफ से काम लेना है। अच्छा, अब मैं मज़ीद अपनी बातों से आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्सों में इस पर मज़ीद बात करेंगे अखलाकियात में। प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा म्यूज़िकल ट्रैक शामिल करने से पहले मैं एक और आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी फलां शख्स बहुत खुश अखलाक है, कभी उससे मिलिएगा जी खुश हो जाएगा आपका, या फलां तो बड़ा बद अखलाक है मैं तो कभी उससे बात ना करूं। तो अब इस चीज़ से, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इस चीज़ से हमें क्या मतलब मिलता है, इस चीज़ से हमें ये मतलब मिलता है कि खुश अखलाकी बहुत बड़ी नेमत है। खुश अखलाकी अगर हम अपने हाथ में रखेंगे, उसको हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली इट विल बी बिकमिंग आवर लाइफस्टाइल, जिस तरह हमारी रिलीजियस टीचिंग्स में भी ये सारी चीज़ें हैं। और हम अगर इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली इखलाक जो एक मुस्बत इखलाक खुश अखलाकी जो है वो हमारी पहचान बन जाएगी। इसी बात के साथ हम अभी प्रोग्राम में एक सजाद अली की आवाज़ में गाना शामिल करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो शो राइट हियर बैठक राइट हियर ऑन CFCR 90.9।